ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 12, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 46 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की

0: मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम वंदन वार का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा धर्म है। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। झरोखा के अंतर्गत आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप किस समय पर सुन सकते हैं।

6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे ठीक 7 बजे। 7:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात प्रस्तुत किए जाएंगे 8 बजे। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी चित्रलोक, सुनना ना भूलिएगा 8:30 पर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू कार्यक्रम आज का अखबार में 9:30 पर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम जो कि आपकी फरमाइश पर आधारित रहता है, लाइव फोनिंग ये कार्यक्रम होता है, ये आप सुन पाएंगे 10:05 पर। गाने सुहाने ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 11 बजे और 11:30 पर।

12:05 से एक बार फिर से सिलसिला शुरू होगा गीत संगीत का, यादों की महफिल कार्यक्रम के जरिए। प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर। प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 1:10 पर। 1:15 ये समय रहेगा फिल्म संगीत का। सुरीला सफर इस कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे 1:30 पर। और 2:00 कार्यक्रम त्रिवेणी लेकर हाजिर होंगे। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम सुन सकते हैं आप 2:30 पर। सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 3:00। और 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सेहतनामा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे 5:30। 5:05 पर फिल्म संगीत का आनंद आप उठाएंगे और 5:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

6:10 ये समय रहेगा प्रादेशिक हिंदी समाचारों का। आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से 6:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार। 6:30 ये समय रहेगा हिंदी समाचार समीक्षा का। पंजाबी गीतों का आनंद आप उठाएंगे 6:35 पर। 7:00 लेकर हाजिर होंगे जयमाला। सात बजकर 45 मिनट पर प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुन सकते हैं। 7:47 समय रहेगा पंजाबी गीतों का। 8:00 हवा महल लेकर हाजिर होंगे। 8:15 ये समय रहेगा चित्रलोक का। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं ठीक 9:00। 9:30 ये समय रहेगा कार्यक्रम आज के फनकार का। दस बजे छाया गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और 10:32 पर आप सुनेंगे सुर सांझ कार्यक्रम। तो ये हैं आज हमारे केंद्र से प्रस्तुत किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब समय हो गया है श्री रामचरित मानस पाठ का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा, ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को समीप पाकर वो

प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्री राम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का भाग 269।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रृंखला वर्षा चौमासा की आज की यह तीसरी कड़ी। शुभा मुद्गल हमारी जानी पहचानी प्रख्यात

0: गायिका स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार। और आपने मेरी तारीफ तो कर दी, पर मुझे भी ये कहना है कि संगीत सरिता एक बहुत बहुत वर्षों से मैं भी सुनती आई हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने, मेरे लिए विशेष उपलब्धि है कि आज मुझे इसमें प्रस्तुति करने का अवसर दिया जा रहा है।
0: जी, तो बात चल रही थी मल्हार की, शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ, और इसके बाद आज आपने कौन सी बंदिश चुनी है, किस राग को चुना है, सब कुछ बताइए।
1: मैंने आज के लिए राग गौड़ मल्हार चुना है।
0: जी,
1: बहुत लोकप्रिय मल्हार का प्रकार है, प्राचीन भी है और इसे विभिन्न प्रकारों से गाया जाता है, यानी खूब मतभेद है इसके विषय में।
0: अच्छा अच्छा
1: कि बिलावल थाट का है, खमाज थाट का है, इत्यादि इत्यादि। कोमल गंधार लगा के गाना चाहिए, कैसे गाना है, दोनों निषाद लगने चाहिए कि नहीं, ये सब बहुत अलग अलग चर्चा है। लेकिन मैंने जिन दो बंदिशों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है उनके विषय में एक और बात आपको बताना चाहूँगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं वो हमेशा ही प्राचीन होती हैं, और जैसे ही किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संगीत हो तो वो एकदम 5,000 साल से कम का नहीं होता। लेकिन सत्य तो ये है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाले लोग तो आज भी हैं और रचना करने वाले लोग
0: भी आज हैं,
1: हैं, प्रस्तुत हैं हमारे बीच में।
0: मतलब वो धारा जो रचना की है वो अविरल है, बहती जा रही है और वो विस्तृत भी होती जा रही है।
1: बिल्कुल। और उसमें अपना अपना योगदान समर्पित रूप से लोग करते जाते हैं।
0: जी।
1: तो ये जो दोनों रचनाएं चुनी हैं, एक मैंने झपताल की रचना चुनी है और एक मैंने तीन ताल की रचना चुनी है,
0: अर्थात ये वर्षा ऋतु से संबंधित थी बंदिशें होंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। गौड़ मल्हार में निबद्ध और वर्षा संबंधी साहित्य की दो रचनाएं हैं, लेकिन दो बहुत ही जाने माने वाग्यकारों की बंदिशें हैं ये। जो पहली जो बंदिश है झपताल में जो मैं गाऊंगी,
0: गौड़ मल्हार का जो चलन है वो भी अगर आप मतलब आरोह अवरोह और राग के बारे में थोड़ी सी पहचान जो हो।
1: जी, तो कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं, वैसे तो मैंने बताया कि अलग अलग तरह से गाया जाता है इसे, लेकिन जो मैं प्रस्तुति कर रही हूँ उसमें ये मुख्य जो इसकी स्वर संगतियां हैं वो इस प्रकार हैं। सारे गामा गामा, ये गौड़ की विशेषता।

0: ये गौड़मल्हार की एक शक्ल ऐसी बनती है और ये इन बंदिशों में आपको सुनाई देगी।
1: आप झपताल में जो बंदिश गाने वाली हैं वो पहले?
0: जी, जो इसके बोल हैं उनसे अगर आप पूरा स्थाई अंतरा सुने तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाग्यकार हैं उनकी छाप उसमें आपको मिलेगी। उमड़ घुमड़ आए कारे बदरवा, अजहू पिया नहीं आए मंदरवा, रुत बरखा में सब घर आए, आए न प्रेम रंग रंगीले पियरवा।
1: अच्छा, ये इनका तखल्लुस है
0: प्रेम रंग जी। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेम रंग के नाम से कई लोग रचना कर चुके हैं। मुझे मेरे गुरुजी पंडित रामाश्रय झा जी से पता चला कि ये बंदिश जो है ये एक बहुत जाने माने विद्वान वाग्यकार रहे स्वर्गीय पंडित डी टी जोशी
1: जी,
0: उनकी बंदिश है ये
1: जी
0: जो प्रस्तुत
1: जी,
0: कर रही हूँ मैं
1: जी।

0: शुभा जी, आप एक दूसरी भी बंदिश की बात कर रही थी कि गौड़ मल्हार में आप प्रस्तुत करने वाली हैं,
1: जी
0: तो वो रचना भी तो बताइए ना।
1: ये रचना पंडित रामाश्रय झा जी, मेरे गुरु जी, जो राम रंग के नाम से रचना करते हैं, उनकी गौड़ मल्हार की एक रचना है तीन ताल में। और इसमें वो कहते हैं कि घन घेरी आयो री माँ, गगन गरजत डर पावे, बड़ी बड़ी बूंदन बरसे, दामिनी दम के चमके कामिनी जियरा धड़के, दामिनी दम के चमके कामिनी जियरा धड़के, राम रंग मनुआ लरजे तरसे, घन घेरी आयोरी माँ।
0: जी, और घन जब इस तरह से घेर घेर लेते हैं, और कामिनी जो है अगर वो अकेली है तो उसका जियरा जरूर ही धड़केगा
1: जी
0: और लरजेगा मन, सुनते हैं।

श्रोता मित्रों, ये था राग गौड़ मल्हार, और गौड़ मल्हार में शुभा मुद्गल जी से हमने दो बंदिशें सुनी। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

रेल का डिब्बा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे सोनी महिवाल फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत था। श्रोताओं, आज है गीतकार शकील बदायूनी का जन्मदिन। आज भूले बिसरे गीत उन्हीं के लिखे गीतों पर आधारित है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म से। शकील बदायनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: फिल्म अमर से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। आज गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार जयदेव का जन्मदिन है। उन्हीं के गीत और संगीत से सजा था आज भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

मेरे महबूब, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नौशाद ने संगीत दिया था और शकील बदायूनी ने इसे लिखा।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

0: लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से। शकील बदायूं ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।
1: एक बार जरा फिर कह दूं, मुझे शर्मा के

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे गीत बिन बादल बरसात, इस फिल्म से। लता मंगेशकर, हेमंत कुमार की आवाजों में, शकील बदायनी ने इसे लिखा था, हेमंत कुमार का संगीत था। अब हम है राही प्यार के की अगली पेशकश।

0: अमर ज्योति इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और ए हरिहरन की आवाजों में। जयदेव ने संगीत दिया, नक्श लायलपुरी ने इसे लिखा।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: घरौंदा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाजों में गीत। गुलजार ने इसे लिखा, जयदेव का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम है राही प्यार के यही संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत

0: और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय

0: सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि

0: कि हुरमुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो

0: आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का, जिसे हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। त्रिवेणी

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

0: भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ाने, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुँच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।
1: पकियन का मेहमान है।

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
2: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म संडे से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, कामरान बारी और मोहम्मद अली की आवाजों में। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे लकी, नो टाइम फॉर लव। इस फिल्म से समीर ने इसे लिखा, अदनान सामी का म्यूजिक।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।

0: जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
7: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए
9: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक और वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

गोलमाल थ्री से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान अनुष्का मनचंदा की आवाजों में, कुमार ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: basanti,
1: mujer rang de basanti, rang de basanti, rang de basanti, yaar.
2: दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
3: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
6: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
7: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
6: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
7: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
6: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
7: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
6: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
7: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
6: आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का अखबार।
6: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
8: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
9: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
8: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
9: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
10: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
6: आज का अखबार।
5: श्रोताओं, आज का अखबार कार्यक्रम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। कहते हैं जिंदगी तब तक चलती है जब तक दिल धड़कता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर किसी का दिल धड़कना बंद कर दे और फिर किसी दूसरे इंसान की वजह से वही धड़कन दोबारा लौट आए, तो वो सिर्फ चिकित्सा का चमत्कार नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है।

दोस्तों आज है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी भाग दौड़ भरी रहती है और सुबह की जल्दी, दिन भर का काम, ट्रैफिक का तनाव, मोबाइल की स्क्रीन और जिम्मेदारियों का बोझ, इन सब के बीच सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है भला? हमारा दिल।

बिल्कुल सही। दिल कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी ओवरटाइम का हिसाब नहीं करता। दिन हो या रात, खुशी हो या गम, ये बिना रुके लगातार धड़कता रहता है।

डरने की बात नहीं है, लेकिन जब हम उसकी परवाह करना भूल जाते हैं तब वही दिल हमें रुककर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दिल का ये रिश्ता हमसे है ही कुछ ऐसा, एक दूजे के बिन हम अधूरे हैं।

हृदय प्रत्यारोपण सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये किसी व्यक्ति को जीवन का दूसरा अवसर देने की कहानी है। ये उस परिवार के साहस की कहानी है जो अपने गहरे दुख के बीच अंग दान का निर्णय लेकर किसी दूसरे घर की खुशियां लौटा देता है।

अब जरा सोचिए, आपके घर का बुझता हुआ एक दीपक किसी दूसरे घर के दीपक की लौ से फिर जगमगा उठे, यही एहसास हृदय प्रत्यारोपण और अंगदान का है। एक जीवन से दूसरे जीवन तक उम्मीद की रोशनी पहुंचाना, और एक गीत हम भी पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अब बारी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2026 परीक्षा में फिर किए बड़े सुधार। नीट पीजी एक ही शिफ्ट में पेपर, घर के पास सेंटर। पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की दर 60% घटी। प्राइमरी स्कूल में ड्रॉपआउट जीरो। 13 साल में 98.91 लाख बच्चियों ने योजना से की पढ़ाई। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में धार्मिक थीम वाला देश का पहला क्रिकेट स्टेडियम ले रहा आकार। स्टेडियम महादेव की छवि पर आधारित। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण में ड्रोन रोधी क्षमताओं का किया गया व्यापक परीक्षण और प्रदर्शन। पीएम ने नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान का किया आगाज। दिल्ली में 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार नहीं होगी। भारत के 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए। हरियाणा ने मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और पंजाब ने वेट लिफ्टिंग में जमाई धाक। देश के 13 में से 7 गोल्ड हरियाणवी खिलाड़ियों के, पंजाब के खाते में 2 सिल्वर आए। रूस में सबसे बड़े पैडल बोर्डिंग फेस्ट का रोमांच। 15 देशों के 50,000 लोग पहुंचे। यूएई में इस साल पहली बार 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: कार्यक्रम आज का अखबार में अब बारी है क्षेत्रीय खबरों की। पंजाब के सरकारी स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा भर्ती निदेशालय ने बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। स्कूलों में 2000 PTI पदों पर भर्ती, 31 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे उम्मीदवार। पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की आज से हड़ताल, बसों का चक्का जाम। फिटनेस सेक्टर में रोजगार स्वरोजगार की तैयारी, पंजाब में पहली बार खेल विभाग शुरू करेगा पर्सनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। पंजाब सरकार कराएगी 4 माह का फ्री कोर्स, 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन। पंजाब में मतदाता सूची संशोधन का पहला चरण आज होगा पूरा, अगले चरण में आंकड़ों का विस्तृत सत्यापन होगा। 2.14 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज्ड, अब कल अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। नूह में सावन के पहले सोमवार निकलने वाली ब्रिज मंडल यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ाई निगरानी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग में PGT कंप्यूटर साइंस भर्ती का 1101 अभ्यर्थियों का विस्तृत परिणाम किया जारी। अंबाला में बनेगा विश्व स्तरीय इंडस्ट्रियल पार्क, खाका तैयार। ST/ST संग्रह वृद्धि में हरियाणा शीर्ष पर। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी क्षेत्रीय खबरें।

107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र और कार्यक्रम में अब बारी है स्थानीय खबरों की। GMSH 16 में नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध करवाने के लिए नई पहल। अस्पताल में ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड महिलाएं तैनात। देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए PGI मिसाल बनकर उभरा। PGI का सारथी मॉडल देश भर के अस्पतालों में होगा लागू। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। सोलह अगस्त से होगी चंडीगढ़ स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप। शहर की मार्केट्स को दिवाली से पहले आकर्षक और एक जैसी थीम में सजाने का रास्ता हुआ साफ। डेकोरेटिव लाइट पॉलिसी को दी मंजूरी। दिवाली से पहले जगमगाएंगी मार्केट्स। फैशन में करियर का मौका। PU शुरू करेगी डिप्लोमा कोर्स। 100 सीटों पर 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन। मेरिट पर होगा दाखिला। CDOE में मौके पर मिलेगा दाखिला। हर समस्या का होगा समाधान। 20 अगस्त तक चलेगा ऑन द स्पॉट एडमिशन कैंप। रैगिंग पर UGC सख्त। छात्रों को ऑनलाइन भरना होगा एंटी रैगिंग शपथ पत्र। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी स्थानीय खबरें।

गीत संगीत के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं। आपकी सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आते हैं इसी कार्यक्रम में। अब एक और खबर करते हैं आपके साथ साझा। दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं और ये संख्या 15% है, जबकि दुनिया में सिर्फ 5% महिला पायलट हैं। 10 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा है और भारत में 1 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ महिलाएं हैं। और अगर गांव की बात की जाए तो 37% यानी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रमबल भागीदारी शहरों से 32.7% ज्यादा है। और अगर और भी बात आपको बताएं तो 43% जो लड़कियां हैं वो स्टेम कोर्स की पढ़ाई कर रही हैं और ये विश्व में सबसे अधिक है। तो कुछ खास अपडेट्स रहती हैं हमारे पास और कोशिश रहती है कि आपको भी वो चीज़ें बताई जाएं ताकि आप अपडेट रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। एक और खास खबर है हमारे पास, केरल के एर्नाकुलम में नई पहल हुई है शुरू। चाय की दुकानें बनी कवियों का मंच, गांव फिर से परिवार बन गए और घरों से निकलकर एक दूसरे का सुख दुख जान रहे हैं महिलाएं और बुजुर्ग। है ना बढ़िया बात।

0: श्रोताओं, आज का अखबार कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
1: आज का अखबार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से

0: नजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
2: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।

0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

श्रोताओं, हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में मोनिका ठाकुर करती है आप सभी का तहे दिल से स्वागत। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में सबको इंतजार रहता है बादलों की झमाझम बारिश का। वो अलग बात है कि जितने बरसने चाहिए बादल उतने नहीं बरसे हैं। बरसते बादलों की बूंदें जब धरती को लबालब पानी से भर दें तो हमें पता चल जाता है कि बरसात का मौसम आपके शहर में दस्तक दे चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों का भी ये पसंदीदा मौसम रहता है। सबकी कुछ यादें, कुछ किस्से इस मौसम के जरूर उनके जहन में

भी होंगे और हर कोई अपने अंदाज में सीजन की खुशियों को सेलिब्रेट करता है। बरसात में भीगना और गर्मी से कुछ पलों के लिए राहत पाना हम सभी की चाहत रहती है, लेकिन ये खुशियां अपने साथ और भी बहुत कुछ लेकर आती हैं, जैसे बरसात में पनपने वाली बीमारियां। तो क्यों ना आज यही बात आपसे की जाए कि बरसात में बढ़ता है बीमारियों का प्रभाव, आसपास रखें सफाई, करें अपना बचाव। ये आज का हमारा विषय है जो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, ये है लाइव फोन इन प्रोग्राम, जिसमें हम करते हैं आपके दिल की बात, आपके विचार हमारे साथ साथ तमाम लिसनर्स

19 एसटीडी कोड है 0172। हमेशा की तरह इस बार भी हमें अपने लिसनर्स की फोन कॉल्स का इंतजार है और कार्यक्रम में पहली कॉल हम लेते हैं और करते हैं उनसे बात। बात करने से पहले ही हमारे लिसनर गायब हो चुके हैं, पर चलिए हमारे पास आपके लिए गीत संगीत की दुनिया का जो खजाना है कभी खाली नहीं रहता है, जब तक आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लगती है तब तक हम आपके लिए पेश करते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: नमस्कार दीदी
1: जी। नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं और आप भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे। जब लिसनर से बात शुरू हो जाती है ना, तो तबीयत अगर थोड़ी सी नासाज भी हो वो भी बहुत बढ़िया हो जाती है। नाम आपका?
0: जी मेरा नाम धीरज रबारी है।
1: धीरज या नीरज?
0: धीरज।
1: धीरज, हाँ जी। धीरज जी, कौन सी जगह से कॉल किया है?
0: मैं गुजरात डेयर पाटन से बात कर रहा हूँ।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, बड़े दूर से कॉल किया है। और धीरज जी, शायद पहली बार आपसे बात हो रही है ना?
0: आपसे मेरे ख्याल से पहली बात हुई है। आपका नाम मैं जान सकता हूँ?
1: मैं मोनिका ठाकुर आपसे बात कर रही हूँ।
0: मैंने एक आपका कार्यक्रम मेरे ख्याल से गत सप्ताह में था, बहुत प्रयत्न किया क्योंकि विषय भी अच्छा था।
1: हाँ,
0: लेकिन नसीब में नहीं था बात करने का।
1: अरे आपको पसंद आया, इससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है।
0: जी
1: जी, तो आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे धीरज आप?
0: जो बारिश की ऋतु है, इस ऋतु में हमें बहुत सेहत का ध्यान बहुत रखना पड़ता है।
1: जी,
0: क्योंकि जो मच्छर पलपते हैं तो उस अगर एक मच्छर काटता है तो बुखार लाता है और बुखार में से भी आगे बहुत सेहत को नुकसान होता है। तो हमें ध्यान कहीं रखना है कि मच्छर कहीं नहीं काटे हमारे शरीर पर। तो उसके लिए हमें कपड़े कम यानी सुथराऊ कपड़े कम्प्लीट पहनने हैं। दूसरा कि पानी उबाल के पीना है
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, और हो सके इतना गीला कम रखे। बारिश है तो गीला तो रहेगा घर, लेकिन कम रखे क्योंकि गीले घर में कई सर्दी है खांसी है वो भी यानी बीमारी हो सकती है। तो जागरूक

0: होने की जरूरत हमें है।
1: जी जी,
0: ऋतु अपना काम कर रही है, लेकिन जागरूक हमें रहना है। और हमें कब रहना है वो हम सबको पता है, पानी उबाल के पीना है, कपड़े पूरे पहनना है, अगर बहुत ठंड है यानी बहुत बारिश है तो हो सके तो बाहर कम जाना है, सब बातों का ध्यान रखना। पर ज्यादातर मोनिका जी जो वृद्ध है, जो हमारे माँ बाप है, हमारे दादा दादी है और बच्चे है, उनको बहुत हमें केयर करनी है, उसको साचरना है।
1: जी, उनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो काफी कम रहता है, तो ऐसे में उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। धीरज जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आगे भी कॉल करते रहिए और अपने विचार साझा करते रहिए। शुक्रिया
0: आपसे बात। ये कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है, उसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं, और टॉपिक तो आपको पता ही है, हमारा विषय है बरसात में बढ़ता है बीमारियों का प्रभाव, आसपास रखें सफाई, करें अपना बचाव। और फोन नंबर्स हैं हमारे 2660615, 2660617 और 2660619। जी हेलो चंडीगढ़, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: हेलो
1: जी, आपका नाम?
2: आशा।
1: आशा जी, कौन सी जगह से कॉल किया है?
2: दिल्ली से।
1: दिल्ली से, क्या बात है, आज नए नए श्रोता बात करने को मिल रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। आशा जी बताइए, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगी आप?
2: अपने आने वाले सफाई रखनी चाहिए और पानी
1: जी, पानी उबाल के पिए, फिल्टर है तो फिल्टर का पी सकते हैं, अगर वो सुविधा नहीं है तो हम पानी उबाल के पिए तो वो ठीक रहेगा, है ना? आशा, आपकी आवाज हमें काफी कम आ रही है और अगर हम नहीं सुन पाएंगे तो जो आप कहना चाहती हैं तमाम लिसनर्स भी नहीं सुन पाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा जोर से कहिए, और ये जो आपका रेडियो है, रेडियो सेट का वॉल्यूम या तो बिल्कुल कम कर दीजिए या उसे थोड़ा आप साइड में आ जाएं ताकि हमें अपनी ही आवाज ना सुनाई दे। जी जी आशा जी, तो हमारे कॉलर्स कोशिश तो करते हैं हमसे कार्यक्रम में जुड़ने की, पर कई बार सिग्नल की दिक्कत रहती है और इस वजह से फ़ोन कट जाता है, पूरी बात उनकी नहीं हो पाती है। तो मज़ा बरसात के मौसम में बहुत आता है, चाहे भीगने की बात की जाए या खाने पीने की बात की जाए, और जब हम बाहर जाते हैं और बाहर का जो बिना ढका हुआ सामान है वो हम खाते हैं तो अक्सर हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी चीज़ आप खाएँ वो ढकी हो और आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो।

0: में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन बात बनेगी हमारे इस कार्यक्रम की जब हमारे लिसनर्स इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे साथ और साझा करेंगे अपने विचार। बरसात के मौसम की आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बीमारियों का जो प्रकोप है किस तरह से बढ़ जाता है और साफ सफाई कितनी ज़रूरी है इस मौसम में। बरसात के मौसम हम अक्सर देखते हैं कि नमी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, चाहे हम अपने कपड़ों की बात करें या ख़ास तौर से जो हमारे टॉयलेट हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। कपड़े हो गया, आपने अगर पोछा लगा के रखा है वो भी जल्दी नहीं सूखेगा। तो जब नमी रहेगी तो ऐसे में मॉइस्चर में बहुत सारे कीटाणु हैं वो पनपते हैं, तो हमें ऐसे में ख्याल रखना है। और अगर हम किसी तरह की सावधानी इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ये है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें अपने आसपास, ताकि जो मच्छर हैं जो बैक्टीरिया हैं ऐसे में पनपते हैं उनकी संख्या कम हो सके, चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। और जो तेज़ी से बीमारियां फैलती हैं जो हम बिना फिल्टर का या बिना उबला हुआ पानी पीते हैं वो भी कम कर सकते हैं, ताकि हम बाहर हम अक्सर चटपटा खाना पसंद करते हैं और गोलगप्पे किसे पसंद नहीं है, वो पानी कहाँ से लिया गया है कहाँ से नहीं लिया गया हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह की बाहर की चीज़ें ख़ास तौर से बरसात के मौसम में अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम फिट रह सकते हैं, थोड़ा अपना ध्यान रख सकते हैं। साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है, अपने घर की तो साफ़ सफाई आप करते हैं, लेकिन घर के बाहर चाहे पार्क है या सड़कें हैं वहाँ पर अगर आप कूड़ा ना फैलाएं और जो घास काफ़ी लंबी हो चुकी है उसे काटना ज़रूरी है, अगर उसे काट दें तो ये जो मच्छर हैं जो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं उससे भी बचाव हो सकता है। फिलहाल एक कॉलर हैं हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: हेलो नमस्कार जी।
1: जी आपका नाम?
2: मैडम मेरा नाम अरविंद कुमार, गाँव मोरनी हिल से बोल रहा हूँ जी।
1: अरविंद जी
2: जी,
1: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मैडम जी यही कहना चाहेंगे कि बारिश के महीने बारिश के टाइम में थोड़ा हमें संभल के रहना चाहिए। घर में थोड़ा पानी इकट्ठा ना होने दें, छतों पे या सड़क पे या घर के आंगन में कहीं भी। उससे भी मच्छर वगैरह का डर रहता है, आजकल मच्छर वगैरह ज्यादा पनपते हैं।
1: जी तो ये हम हर बार अरविंद जी ये विषय लेकर आते हैं कि बरसात में चाहे हम बीमारियों की बात करें, चाहे साफ सफाई की बात करें या हेल्थ की बात करें, तो बहुत बार हमारे लिसनर अपने विचार साझा करते हैं इस पर और नई नई बातें निकल कर आती हैं हर बार बरसात में भीगना सब। हाँ जी कहिए
2: जी। मैडम इस बरसात के मौसम में थोड़ा पत्तेदार सब्जियों को भी थोड़ा देख के इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनके नीचे थोड़े थोड़े कीटाणु जैसे जीव वगैरह रहते हैं।
1: जी
2: पत्ता गोभी होगी, अरबी का पत्ता होगा या दूसरा साग सब्जी सरसों होगा, थोड़ा इनको भी देख के ना खाया जाए तो ठीक है।
1: जी बिल्कुल जी, शुक्रिया अरविंद जी हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: मोनिका जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं सुशील शर्मा हिमाचल से बोल रहा
1: हूं। सुशील जी आखिरकार हिमाचलियों की एंट्री हो ही गई कार्यक्रम में, है ना? आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं तो यही कहूंगा मैडम कि हमें तो खुद भी ध्यान रखना है और इसमें खासकर छोटे बच्चों का तो विशेष तौर से ध्यान रखना है। साथ में ना
1: जी,
3: क्योंकि तो छोटे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं तो पानी विशेष तौर पर पानी जो है ना आजकल तो पानी से ही जो है सबसे ज्यादा जो है पेट खराब हो जाता है बच्चों का।
1: जी।

0: बच्चों का, बच्चों के साथ साथ हमें खुद भी जो है, जैसे अपर शिमला में इधर जो है बगीचों वगैरह में ना आजकल में जो है घास वगैरह होता है, उससे जो है स्क्रब
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्क्रब टाइफस ऐसे फैलता है कि आप एकदम से आपकी पूरी बॉडी को ये चपेट में ले लेता है।
0: इसलिए पूरे जो है, पूरी स्केप जो है, कपड़े पहन के जो है, शरीर का कोई भी जो अंग बिना
1: सुशील जी, आपने घास की बात की, और जब पहाड़ी इलाकों में हम अक्सर देखते हैं कि जब लंबी लंबी घास होती है और पानी जब नमी बनाए रखता है, तो ऐसे में एक जीव रहता है जो चिपक जाता है और गंदा खून हमारा चूसना शुरू कर देता है, ऐसा कहा जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, ये भी जरूरी है, इसमें भी जो है जागरूकता, जब तक जागरूक नहीं होंगे ना, जो इस तरह की जो है बेसिक नॉलेज है ये ना
1: जी,
0: तो होनी चाहिए। तो बच्चों को स्कूल में भी प्रेरित करना चाहिए।
1: तो मौसम बरसात का असर दिखा रहा है फोन लाइंस पर भी, और अपने विचार साझा किए हमसे अभी ठियोग से सुशील ने। आप भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स पर, जो है 2660615, 2660617 और 2660619 पर।

0: ये मिले या ना मिले लेकिन हमारी मुलाकात पक्की है फोन इन प्रोग्राम में। फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम,
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मैं आपका जाना पहचाना श्रोता सतपाल सिंह बिंद्रा।
0: सतपाल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: तो आज जो बरसात की ऋतु में जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे ही बात हो रही है
0: जी।
1: तो जैसा कि आपने बताया, पानी में मच्छर पनपते हैं और कीड़े मकोड़े पनपते हैं, पानी को

0: जैसे सरकारें भी कहती है कि घर में जो खाली बर्तन कहीं बाहर पड़ा है, मिट्टी के बर्तन हो, टायर हो, उनमें पानी निकाल देना चाहिए, उनको सुखा के रखना चाहिए
1: जी।
0: लोग छतों में अपने कबाड़ फेंक देते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है
1: जी।
0: और मच्छर पनपने की संभावना ज्यादा रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और मलेरिया और डेंगू इस तरह की बीमारियां हैं जो वो अक्सर हमें मच्छरों की वजह से होती है
1: जी।
0: तो सावधानी तो रखना चाहिए, खान पान में भी सावधानी बरते हैं। उबला हुआ पानी या फिल्टर का पानी, लोग तो आरओ वगैरह का पानी पीते हैं, तो पानी की समस्या, घर का पानी पिए तो सबसे बढ़िया है
1: जी।
0: कहीं बाहर जाए तो बोतल में पानी लेकर जाए।
1: सतपाल जी, हम एक चीज़ करते हैं कि बासी खाना जो है वो रख देते हैं, तो बासी खाना खाना ऐसे मौसम में कितना नुकसानदायक हो सकता है?
0: बासी खाना तो मैडम हर सीजन के लिए नुकसानदेह है
1: जी।
0: मैं ये समझता हूँ कि मैंने धनवंतरी हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करी थी एक बार चंडीगढ़ में
1: जी।
0: उन्होंने मुझे बताया कि आप एक पके हुए खाने को खा ले और उसको फ्रिज में रख दे, दूसरे दिन फिर गर्म करके खाए। आप जितनी बार गर्म करेंगे आपके शरीर के लिए उतना ही नुकसानदेह है
1: जी। और बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं इस मौसम में, तो खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना।
0: खाना उतना ही बनाए जितना आप उस समय रात का खाना, तो रात को खत्म हो जाए
1: जी,
0: आपको बचे नहीं खाना। ये आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कहना है
1: जी जी जी।
0: खाने को बार बार गर्म करने से उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है और वो नुकसानदेह होता है
1: जी।
0: तो ये जो, और बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, बच्चे अक्सर कीचड़ों में खेलते हैं, बाहर चले जाते हैं, बारिश के पानी में भींगते हैं, तो उनका खास ध्यान रखें। बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है
1: जी,
0: उनको थोड़ा जल्दी असर होता है इन चीजों का।
1: बिल्कुल। तो सतपाल जी, आपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: श्रोताओं, आप भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर हैं, करते हैं उनसे बात। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: मैम नमस्ते।
1: जी नमस्कार,
2: मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे बात कर रहा हूँ मैम।
1: अरे वाह परवेज जी, वाराणसी से।
2: सावन का पहला सोमवार आपको बहुत बहुत बधाई।
1: तमाम श्रोताओं को भी आकाशवाणी के परिवार की ओर से ढेरों बधाइयाँ।
2: जी जी मैम, आप तो हमारे बनारस में बहुत धूमधाम है।
1: आपके बनारस में भी है, और जिसको कहा जाता है कि हमारा पूरा भारत जो है यहाँ देवी देवताओं की कृपा रही ही है, तो हर जगह जहाँ भी शक्तिपीठ है सब जगह, और जो शिवालय है उनमें खास रौनक है आज के दिन।
2: जी जी मैम
1: जी।
2: और बताइए मैम, कैसा मौसम है चंडीगढ़ का?
1: मौसम भीगा भीगा नहीं है। बादल आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, मन में एक आस जगाते हैं कि बरसेंगे। हम कहते हैं कि बरसो रे मेघा मेघा, लेकिन बरसते नहीं है मेघ।
2: जी जी, वहाँ तो यही तो बात यहाँ भी है कि यहाँ भी बरखा रानी का लोग इंतजार कर रहे हैं।
1: हाँ।
2: बरखा रानी हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे बनारस वासियों से नाराज चल रही है।
1: कहीं ना कहीं रीजन भी हम ही हैं। ये जो मानव दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, तो प्रकृति भी अपना रूप तो दिखाएगी। चलिए वो अलग टॉपिक हो गया।
2: 100% हम ही लोग की देन है मैम ये
1: जी।
2: और हम लोग अगर ना सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी
1: जी। अब विषय पर आते हैं परवेज जी, आज के विषय पर आपके विचार जानना चाहेंगे।
2: जी मैम,
1: क्या कहेंगे? विषय है बरसात में बढ़ता बीमारियों का प्रभाव।
2: हाँ। बारिश में बीमारियों से सावधानी मैम ना।
1: जी जी जी।
2: तो बारिश में कहा जाता है मैम कि बारिश जब होती है तो बारिश के पानी जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और उनसे जो कि संक्रमित रोग करने वाले जो मच्छर पैदा होते हैं, और जो कि इससे जो कि बचाव रखे जगह, अगर आपके घर के अगल बगल में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को साफ करें। अगर कूलर में भी पानी कहते हैं, कूलर में भी पानी अगर ज्यादा दिन का हो जाएगा तो उसमें भी मच्छर पनपते हैं, उससे भी घर में बीमारियां। और एक बात और है मैम कि बारिश के दिनों में मच्छरदानी का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि मच्छर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो आके काट लेंगे तो आपको बहुत सी बीमारियां जो संक्रमित रोग की होती है वो होगी
1: जी। और बरसात में भीगना कितना पसंद है आपको परवेज?
2: बरसात में मैम तो हम कभी काल तो जरूर भीग लेते हैं, और

0: बारिश में जो कि ज्यादा ना भीगे क्योंकि मौसम का हेर फेर हो जाता है तो तबीयत खराब हो जाती है, और बारिश में थोड़ा से बच्चों को भी बचाव रखना चाहिए कि बच्चों की तबीयत ना खराब हो। अगर बच्चे कभी स्कूल से आ रहे हैं मैम तो अगर भीग गए तो तुरंत उनको कि ताजे पानी से नहला के उनको जो कि तुरंत उनका सर और कपड़ा तुरंत चेंज कराना चाहिए, नहलाना चाहिए कि बच्चे बीमार ना पड़े।
1: चलिए परवेज जी, मजा आया आपसे बात करके, और सुनते रहिए इसी तरह से FM 107.2 MHz पर विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
0: बहुत धन्यवाद मैम।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में स्वागत है आपका।
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, आपका नाम?
1: मैं सूरज बात कर रहा हूँ, तहसील चौक डिस्ट्रिक्ट शिमला, एचपी से।
0: सुरेश जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
1: सूरज जी
0: आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं लेट थोड़ा रेडियो मैंने थोड़ा लेट ऑन किया, तो आप बता सकते टॉपिक दोबारा क्या था?
0: ऐसा है सूरज जी, आज हम बात कर रहे हैं कि बरसात में बढ़ता है बीमारियों का प्रभाव, आसपास रखें सफाई, करें अपना बचाव, ये हमारा विषय है आज का।
1: अच्छा, तो मैं तो यही बोलूंगा, क्या बोलते हैं कि भाई आपको मतलब जैसे घास वगैरह में कभी आप जाते हैं ना, घास वगैरह के बगीचे वगैरह में
0: जी,
1: तो कई लोग चप्पल वगैरह चप्पल में चले जाते हैं।
0: जी जी,
1: मतलब आपको लंबे जूते लगा के रखने चाहिए अपने पास ना।
0: अच्छा,
1: मतलब कई बार आपको पता ही है घास के बीच कितने सारे कीड़े होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी बात ये मैम, और आज के डेट में जो ये बरसात में स्क्रब टाइपस फैलने का सबसे बड़ा खतरा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और मैम, और क्या बोलते हैं, आपको अपने आसपास जितना भी घर के आसपास का एरिया ना, इसका जो फालतू घास जम जाता है वो मतलब उसको टाइम टाइम पर करते रहना चाहिए।
0: जी सूरज जी, सिर्फ घास की ही सफाई ना करें, ये जो कूड़ा है वो भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास ना वो ढेर बनने ना दें कूड़े के, है ना?
1: हाँ जी, वो भी है।

0: तो बरसात के मौसम में अपने दोस्तों के साथ घूमना कितना पसंद है?
1: फिलहाल तो मैम कुछ नहीं मैम, फिलहाल तो हमारा तो मैम बरसात में एक ही काम रहता है कि सेब तोड़ा उसको मार्केट में भेजो।
0: जी, और बरसात के मौसम में अक्सर देखते हैं अगर कहीं पे कीचड़ है या फिर घास है तो उस पर फिसलन बड़ी रहती है,
1: बहुत ज्यादा मैम, बहुत
0: तो
1: ज्यादा ओवर।
0: ऐसे में ख्याल रखें कि आपका पाँव ना फिसले और कहीं चोट ना लगे।
1: जी मैम,
0: तो चलिए, आप सबके लिए हम गीत प्ले करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, फिर गीत सुनवाएंगे आपको। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत
1: हेलो
0: है।
1: हेलो मैडम, नमस्कार
0: नमस्कार।
1: मैडम, मैं शिमला संकट मोचन से बोल रहा हूँ, प्रदीप।
0: अरे वाह प्रदीप जी, लग ही गया आखिरकार कॉल आपका।
1: जी मैडम, ये दीवानगी ऐसी है आपके रेडियो के साथ कि बस वो मिल ही जाता है नंबर। हाँ
0: चलिए, तो अब आपकी दीवानगी हम पूरी करें, अपने विचार साझा करें हमारे साथ।
1: मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि बरसात के मौसम में खासकर हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में ही मच्छर कीड़े मकौड़े पनपते हैं,
0: जी
1: और पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे कई बीमारियां भी फैलने के डर बना रहता है।
0: जी जी
1: और कूड़ा करकट नदी नालों या सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जब हम कूड़ा इत्यादि नालियों में इकट्ठा हो जाता है तो पानी सड़कों में इकट्ठा हो जाता है, जिसे
0: जी
1: पैदल चलने वाले और गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कत पेश आती है।
0: जी
1: और
0: कहीं
1: बरसात के मौसम में मैडम, ये पानी जो है ये उबाल कर ही पीना चाहिए, और बरसात में खासकर घास में ना एक तरह का वो जोंक पाई जाती है
0: बिल्कुल
1: जो हमारे शरीर में चिपक जाती है और हमें पता भी नहीं लगता है,
0: जी
1: और वो जो है हमारे शरीर से खून को चूस लेती है मैडम।
0: जी जी जी तो जो हाँ जी
1: तो हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, घास में ही ये कई तरह के होते हैं कीटाणु वगैरह कीड़े मकौड़े,
0: कई जीव होते हैं जी।
1: जब भी हम चलते हैं तो हमें मतलब नीचे देखकर चलना चाहिए कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं कहीं हमारे शरीर के साथ आ गया,
0: जी
1: कपड़ों के साथ ऊपर को।
0: बिल्कुल। तो प्रदीप जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया, और अब आपको और तमाम लिसनर्स को सुना रहे हैं एक और गीत।
1: मैडम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी
0: धन्यवाद।
1: मच।
0: रखिए दोस्तों अपना ख्याल, और फिसलन भरा ये मौसम रहता है तो ऐसे में गिरने से बचिए।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं बंसीलाल हूं जी।
0: बंसीलाल जी, कौन सी जगह से कॉल किया है?
1: जिला अम्बाला जी, गांव तेजा मोड़ी।
0: वाह वाह वाह,
1: गांव से।
0: चलिए बढ़िया है। तो बंसीलाल,
1: गांव चला शहर की ओर।
0: गांव चला शहर की ओर, अब तो गांव भी शहर ही बन चुके हैं क्योंकि इतनी सुविधाएं गांव में मिलनी शुरू हो चुकी हैं।
1: फैसिलिटी मिल गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अब गांव
1: स्कूल
0: जी, गांव से शहर पहुंच चुके हैं। तो ये बताइए कि बरसात के मौसम में बीमारियों से अपना बचाव कैसे रख सकते हैं हम?
1: साफ सफाई, साफ सफाई समझ लीजिए। पानी तो वैसे खड़े नहीं, अब पानी तो बारिश नहीं पड़ी ज्यादा।
0: बिल्कुल,
1: बात तो कम हो रही है, देखो ये आजकल में पड़ने वाली कह रहे
0: हैं।
1: हाँ, वैसे पानी ना खड़ने दो, टूंटी को व्यर्थ ना चलाओ
0: जी।
1: हाँ, गल पानी की बच्चे तो गल पानी खड़ने का नहीं।
0: हाँ,
1: घास ना उगने दो, ये सड़कों के नेड़े घास होता है
0: जी जी,
1: इसके ऊपर स्प्रे करो या तो या साफ कर दो।
0: याद बड़ी आती है पिंड की गलियों की, गांव की जब बात होती
1: है
0: जी। तो बंसीलाल जी, गांव की बरसात और शहर की बरसात में जो बीमारियां फैलने के जो कारण हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंस आप देखते हैं? कुछ अलग है उसमें?
1: अलग है, वहाँ तो नीचे होते ना पानी निकालने की निकासी होती है, पाइप लाइन होती है वहाँ।
0: हाँ हाँ,
1: उसमें पानी ज्यादा खड़ता है।
0: अच्छा,
1: वो पानी ज्यादा देर खड़े हुआ खराब हो जाता है, दुर्गंध आ जाती है उसमें
0: जी,
1: उसमें मच्छर ज्यादा होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देखो जी, सामान भी बहुत रहते हैं घर में, पैप पड़ा, टायर पड़े, कोई कूलर पड़ा
0: जी,
1: इनकी साफ सफाई रखो, पानी बदलते रहो
0: जी। और किसान तो कहते हैं जब मिट्टी में खुद को मिला देता है तभी वो सोने के रूप में फसल हमें प्राप्त होती है, तो किसान अपना ख्याल कैसे रखें इस मौसम में?
1: किसान भी अपना, देखो किसान तो ख्याल क्या करेगा जी, किसान को तो ऊपर हर वक्त मौत खड़ी है। बाहर दवाइयां, कहीं सांप सिलिंडा सो फिरता है
0: जी।
1: कच्ची मौसम बोलते हैं इनको, कच्ची मौसम है,
0: कच्ची मौसम है। और तभी तो हमने ये एक विषय रखा है कि हर एक क्षेत्र की अपनी जलवायु रहती है और बरसात के मौसम में हर जगह पे अलग अलग प्रभाव ये दिखाती है, तो कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं इस मौसम में, यही वजह है।
1: कमीज बहु
0: जी,
1: हाँ, इसमें मच्छर मुच्छर नहीं काटेगा ना
0: जी जी।
1: हाँ, बूट पा के रखो बढ़िया। प्लास्टिक रखो जहाँ तक, तो प्लास्टिक हो मजी, ये प्लास्टिक बंद तो कर कीजिए 2018 से।
0: हाँ,
1: प्लास्टिक के ऊपर बैन तो पूरा नहीं लगा ना अभी।
0: चलिए, धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि जब जो कंज्यूमर है वही लेना बंद कर देगा तो।
1: हाँ, देखो डिमांड है ना। हाँ, डिमांड तो है ही, तो जल्दी बन रहे
0: जी। चलिए बंसी जी, मजा आया आपसे बात करके और उम्मीद है दोबारा बात होगी आपसे।
1: अच्छा, थैंक यू जी,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: सत्रीकाल
0: जी,
2: राजपाल सिंह बोल रहे हैं।
0: राजपाल जी, आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: विषय तो मैं वैसे रोज ही वधिया हूं, तो वधिया वैसे आज भी।
0: जी
2: हाँ जी, हाँ, मैं काफी टाइम बाद गल कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो आज चाहेंगे कि खुल के आप अपने विचार साझा करें।
2: मैम, आप मान लो कमा कर जाना पैंदा गा, जल्दबाजी करते हैं ना कई बार।
0: हाँ हाँ,
2: बाहर से तो मौसम
0: जी जी,
2: जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नाल तो दिखन का खतरा, नाल भी जो दूसरा जा रहा है वो तो ही बचाओ रहा है, चिट्टे गुट्टे पहन दो। हाँ जी, हाँ,
0: तो
2: साफ सफाई तो रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: हाँ जी, हाँ,
0: साफ सफाई
2: मौसम का, मैं मौसम का भी जानती, सारे चलो बढ़िया होंगे ने
0: जी,
2: सारे मौसम तो बच के रहना चाहिए।
0: हाँ हाँ,
2: सर्दी हुई, गर्मी हुई,
0: शांत
2: पच।

0: हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपको।
0: हाँ जी, हाँ।
1: तो सभी मौसम कुछ खूबियाँ लेकर आते हैं, और जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर मौसम के भी दो पहलू रहते हैं, और
0: हाँ
1: समय
0: जी, हाँ
1: कभी
0: जी।
1: एक सा नहीं रहता है। खामियों के
0: नहीं,
1: साथ
0: अपना
1: साथ।
0: अपना नाम यही। ठीक
1: मेरा नाम मोनिका ठाकुर।
0: है, थैंक यू जी।
1: थैंक यू जी, थैंक यू
0: पहली
1: राजपाल।
0: बार, पहली बार ही गल हो रही है होटल जी।
1: तो हमने तभी कहा कि खुल के बात कीजिए, और हमें भी बहुत खुशी होती है जब नए नए लिसनर्स कार्यक्रम में जुड़ते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, बैठ
1: तो
0: रहेगा तो मैं पुराना ही लिस्टनर,
1: जी
0: कभी कभी चलो कॉल कर लेगी जी।
1: बिल्कुल, साथ छोड़ना नहीं है, और कार्यक्रम में जब भी मन करे, आपका अपना कार्यक्रम है, आप कॉल कर सकते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: शुक्रिया
0: थैंक यू
1: राजपाल
0: मैम।
1: जी।
0: ओके,
1: तो दोस्तों, आप भी ख्याल रखिए, और चाहे बासी खाना हो, बाहर का खाना हो, घर की साफ़ सफाई हो या बाहर की साफ़ सफाई हो, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं बीमारियों के दुष्प्रभाव से। फिलहाल एक और गीत है, बारिश में ये जो बादल हैं बरसने से नहीं रुकेंगे, ये तो बरसते ही रहेंगे, लेकिन अपना ख्याल हमें खुद ही रखना है।

0: हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। जी कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, आपका नाम?
1: जी मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है।
0: पूरा नाम हम आपका नहीं सुन पाए।
1: जी मोहम्मद शाहिद।
0: मोहम्मद शाहिद जी, आज के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से कॉल किया है शाहिद जी?
1: जी बद्दी नालागढ़ के पास से, बद्दी से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से।
0: क्या बात है। तो कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्या बातें हैं आपके जहन में आज जो आप बताना चाहेंगे?
1: जी मैम देखिए, बरसात का टाइम है, इस टाइम बारिश ज्यादा हुई नहीं, लेकिन जो भी हुई है उससे एहतियात बरतना जरूरी है।

0: है, बरसात का पानी आसपास छत के ऊपर फालतू सामान है, कुछ बर्तन वगैरह, टायर वगैरह, जो भी डिब्बे वगैरह है उनको हटा दें या तो खाली करके उसको सुखा के रख दें
1: जी।
0: और घर के आसपास घास वगैरह है तो उसमें उसको काट करके साफ कर दें या उसमें कुछ थोड़ी बहुत दवा डाल दें जिससे वो सूख जाए, और अपना और अपने बच्चों का आस पड़ोस का ख्याल रखें
1: जी,
0: कि किसी तरह की कोई बच्चे स्कूल जाते टाइम या बाहर खेलते टाइम बारिश में गिर जाए तो उनको थोड़ा सेफली उनको कपड़े चेंज करा के और उनको थोड़ी सेहत का भी ध्यान रखें। तो और बहुत सी चीजें हैं, मच्छरों के कपड़े पूरे फुल बाजू के पहने और फुल पैंट पहने, और सोते टाइम मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और खान पीन में बरसात के हिसाब से अपने पौष्टिक आहार वगैरह लेना और सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है मैम।
1: जी क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें आपने एक सांस में बता दी। बहुत खुशी हुई कि बद्दी क्षेत्र से, नालागढ़ क्षेत्र से जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से कॉल आया है। जब बारिश होती है तो इंडस्ट्रियल एरिया में बरसात का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, तो वहाँ पर किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बरसात के मौसम में जब ओपन एरिया में आ जाती हैं तो दिक्कतें होती हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
0: जी जी, उसके ऊपर भी फैक्ट्री कंपनी एरिया जो है वो उसका ख्याल रखती है और यहाँ की जो कमेटी वगैरह होती हैं इस चीज के ऊपर खास करके ध्यान रखा जाता है, और जो काम करने वाले होते हैं उनको भी बीच बीच में जागरूक किया जाता है मौसम के हिसाब से
1: जी।
0: और बहुत सी कमेटियां और बहुत सी यहाँ पे यूनियन वगैरह भी हैं
1: जो बनी है
0: सावधानियां बरतती
1: है ताकि आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मोहम्मद शाहिद जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार साझा करने के लिए।
0: जी जी, और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: कार्यक्रम का अंतिम गीत दोस्तों अब करते हैं आपके नाम।

0: कार्यक्रम में आज हमने जानी आपके दिल की बात, और ये दिल की बात आपकी थी, बरसात में बढ़ता है बीमारियों का प्रभाव, आसपास रखें, सफाई करें, अपना बचाव, इस विषय पर। उम्मीद है आज की जो खास जानकारी थी उससे आपने लाभ उठाया होगा और रखेंगे अपना ख्याल इस मौसम में। फिलहाल हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में बस इतना ही, मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी, हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अपने तमाम लिसनर्स के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं उनका पसंदीदा कार्यक्रम गाने सुहाने। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम रहता है और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म है दिल है कि मानता नहीं।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, संगीत है जतिन ललित का।

गाने सुहाने कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे सुहाग फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। संगीत दिया है आनंद मिलिन ने।

0: गाने सुहाने कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना

0: प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान,
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी? या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शेरो नखमा।

श्रोताओं, शेरो नगमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी दोस्त मोनिका ठाकुर। एक से बढ़कर एक गीत जो आपके दिल के गहराइयों तक उन यादों को छुएंगे जो कहीं किसी कोने में दबी पड़ी हैं। वो साथी जिसे भूले जमाने गुजर गए, आज वही इन आंसुओं के बहते समंदर से फिर बाहर निकल याद आ गया।

साथी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में, संगीत था नदीम श्रवण का। ये निगाहें रह रहकर उन्हीं पे जाकर रुकती हैं, वो हजारों बार भले ही खफा हो हमारे इस गुस्ताखी पर, लेकिन हमारे दिल का हाल तो बस हम ही जानते हैं कि क्यों ये दिल उन बिन बेकरार है।

रंग फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में, संगीत नदीम श्रवण का। तेरी एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास, पहले तो महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास।

संघर्ष फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें सोनू निगम, श्रद्धा पंडित की, संगीत जतिन ललित का। महबूबा का साथ हो तो धरती गगन, महबूबा की पायल की रुंझुन सब दिल की तारों में एक संगीत छेड़ देती हैं, जैसे इस गीत में।

विरासत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें कुमार शानू और के.एस. चित्रा की, संगीत अनु मलिक का। जानते हैं पाना उन्हें किस्मत में नहीं है हमारी, फिर भी उनके ख्वाब इन आंखों में सजने लगे हैं।

मिस्टर बेचारा फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार शानू की आवाज में। सजते सवरते थे पहले खुद को आईने में निहारने के लिए, न जाने जब से इस दिल के दरवाजे पर दस्तक दी उसने, तब से उनकी निगाहों में ढूंढते हैं अब खुद की तस्वीर।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और

0: उत्तराखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोंसले की आवाज़, संगीत रवि का।

करवट बदलते हैं, दिन रात ने चूले अंदर से।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा।

0: सखी सहेली।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों के महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पर आई, तुम्हें मिल गया ठिकाना।

0: और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे, FM 107.2 MHz पर। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
4: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
5: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
4: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
5: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
6: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
4: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
6: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
5: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़, Sector 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
5: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए, अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले

हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी होगा दिन में 2:00, 2:30 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3:00। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में आज नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर।

हरियाणा राज्य के साप्ताहिक समाचार समीक्षा पेश की जाएगी शाम 6:30 पर। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:35 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। हवा महल प्रोग्राम में रात 8:00 हास्य नाटिका सुनिए कैसे कैसे दोस्त।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा नदी की तेज धारा में बह जाने से जान गंवाने वाले चंडीगढ़ के 4 नाबालिग बच्चों के शोकाकुल परिवारों को 5,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। राज्यपाल एवं प्रशासक ने कल सायं शोकाकुल परिवारों से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की तथा इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव

0: सहयोग का आश्वासन दिया। परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में चंडीगढ़ प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ा है। श्री कटारिया ने कहा कि दिवंगत बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखते थे, जिनमें कुछ परिवार अत्यंत कठिन आर्थिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। समाजसेवी डॉक्टर संजीव गोयल ने फरीदकोट में अपने सभी सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कल पंजाब के फरीदकोट जिले के सादिक स्थित दाना मंडी में आयोजित विमुक्त जाति समाज सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह की मौजूदगी में वे अपने साथियों सहित भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री नायब सिंह ने कहा,
1: संजीव गोयल जी और उन्होंने पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जी आया कहना इन्हों का स्वागत करता। पंजाब अज क्राइसिस से गुजर रहा, इन्होंने इन्होंने पूरी टीम ने बड़ा फैसला लिया कि असि पंजाब मजबूत करी, असि पंजाब नु आगे बढ़ाई। मैं इन्हों का दिलों धन्यवाद करता है। मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है की अज बड़े मौजूद प्रमुख लोगों ने फरीदकोट बाबा फरीद की इस पवित्र भूमि से ज्वाइन किया।
0: हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने युवाओं से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। श्री राव नरबीर सिंह कल गुरुग्राम में पर्यावरण संरक्षण एवं विकसित भारत के नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लाए तो देश को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारत के पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। लोकसभा को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के सफल प्रदर्शन की बात की और भारतीय खेल में उनके योगदान के लिए खिलाड़ियों की प्रशंसा की।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ग्लासगो में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही 2030 में अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल के लिए उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह के दौरान भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया। भारत ने पिछली बार 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। 11 दिनों के कड़े मुकाबले के बाद भारतीय एथलीट संतुष्ट होकर ग्लासगो से रवाना हुए। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य हित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सावन मास के पहले सोमवार पर कुरुक्षेत्र के कालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित किए। कालेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी राकेश ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में लोकांपति रावण ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। रावण ने भगवान शिव से काल पर विजय का वरदान मांगा और यह भी प्रार्थना की कि वर देते समय कोई तीसरा साक्षी न रहे। बताया जाता है कि भगवान शिव ने नंदी महाराज को कैलाश भेज दिया और समय रावण को दर्शन देकर वरदान प्रदान किया। आज पानीपत के प्राचीन देवी मंदिर सहित जिले के सभी शिवालयों में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जल अभिषेक किया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शूटिंग मुकाबले च भारत दे पहले सोन तमगा जेतू ते पंजाबी गीतकार भोला राम शामिल ने। सदन ने उन्हां नौजवानां नूं वी श्रद्धांजली भेंट कीती जिन्हां ने नीट पेपर लीक तों बाद हाल ही च होए विरोध प्रदर्शनां दौरान अपनियां जानां गवा दित्तियां सन। सत्कार वजों विछड़ियां रूहां दी याद विच 2 मिनट दा मौन भी रख्या गया। जिवें ही इजलास 12 बजे प्रश्नकाल नाल मुड़ शुरू होया तां स्पीकर ने लगभग 20 मिंट दे कामकाज तों बाद इस नूं दोबारा 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिता क्योंकि विरोधी धिर कांग्रेस फरीदकोट पेपर लीक दे मुद्दे ते सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे अस्तीफे दी मंग ते नारेबाजी कर रही सी। हुण इजलास दी कारवाई जारी है।

0: घायल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
1: HPTDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए।
0: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्म आया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें से हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूँ गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्म आया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप ज़रूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूँ कहें कि शुरुआती जीवन जहाँ हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना। और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफ़र कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नज़र ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाज़ें, मुख्य आवाज़ें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए। सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी और जितनी मधुर आवाज़ है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है। बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है। फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है, जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशुदास की आवाज़ में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, आपने प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं,

ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित

0: भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ानें, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुँच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।
1: बगियन का मेहमान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़

0: भी बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक

0: का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध

0: कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एस डी बर्मन का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलाल आबादी की बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: काल।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय, तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आए तुम आके,
0: हाय हाय गुरूर इतना,
1: हाँ हाँ हुजूर इतना,
0: उप ये अदा है ये नया।

0: नैया
1: हाय। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज़ कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी की बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा, आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। और भाई, बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहाँ का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जब आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई, ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे,
1: हाँ,
2: वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है। हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुँचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
2: जी,
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित का हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं।
1: हाँ।
2: और इस दूध में जो, जैसे आपने बताया, रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ।
2: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
2: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए, यानी उसके विकास के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं।
2: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता
1: हाँ।
2: है, उसको कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
1: बिल्कुल।
2: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते
1: हैं। हाँ, बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
2: जी।
1: वो।
2: और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी है और उनके पास परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों, इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो चलिए अब गीत सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान

0: जिससे उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा, ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
1: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना कि इसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे ना केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीज़ों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना।

0: के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
1: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना कि इसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीज़ों की जब कमियाँ आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल, कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है, ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
1: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते।
0: चलिए।

0: अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
2: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
3: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
4: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
3: अब हम उसे कटवा लेना।
4: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
2: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
4: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
2: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
3: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
4: जी,
3: ये क्या बात है?
4: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
3: पर

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई

0: हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
1: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, और जब मैं असली ठाकुर हूंगा तो इसे कटने न दूंगा।
0: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
2: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
1: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
0: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
1: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
2: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
0: क्या बात है मनोहर सिंह?
1: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
0: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
2: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी ला कर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
1: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
0: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं, अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
1: ठाकुर साहब इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
0: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
2: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
2: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
4: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाए तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
2: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है, इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
1: तेजा बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा।

0: भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये बेचारे हैं क्या चीज?
1: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
2: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतज़ार आज पूरा हो गया।
3: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज़, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी हाँ। किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल?
2: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
3: बिल्कुल।
2: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीज़ों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
3: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
2: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
3: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: सम।
1: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
2: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
1: क्या क्या सीखा,
2: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी है।
1: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ता रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहाँ से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
2: सही बात,
1: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
2: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
1: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
1: बहुत सही कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कम्फर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
2: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे दुकान पे ले जाए जहाँ पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
1: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव

0: अंतर और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल। और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज़्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोज़ाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता ये है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल। जहाँ एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से समय निकालें, लेकिन वो चीज़ जब हमें रुचि देने लगती है और मज़ा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वहीं उस चीज़ के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर

0: इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: बिल्कुल
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया
1: बिल्कुल,
0: सीख रहे
1: और
0: हैं।
1: ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा,
0: जी
1: जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं।
0: जी
1: एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी ज़रूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत ज़रूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी ज़रूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, और
0: बिल्कुल
1: जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो ये भी
1: चीज़ें तो
0: सीख
1: वही
0: सकते
1: होती
0: हैं।
1: हैं, चीज़ें
0: हाँ
1: वही होती हैं, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज़ को, हम
0: हाँ
1: कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज़ें हैं और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूं आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वालों को।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ। इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे ज़रूर पूरा कर लेंगी, और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है उनको
1: उन्हें भी
0: भी।
1: खुशी होगी, और आप संदेश के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका
0: जी
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीज़ों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है, और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है। प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए।
1: जी
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना? तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदि हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
4: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का, तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉयड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉयड फोन और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फोन

0: को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ये तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है
1: जी।
0: तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
1: बिल्कुल,
0: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
1: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
0: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
1: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
0: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची यानी कि कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है, क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है। थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
1: उसका जो मसाला है जी,
0: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: भाई, एक संदेश ये कहता है कि झालपुरी को भेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई, अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार
1: सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक AISSMS पुणे।
2: अपनी सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3,00,000 से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
3: नमस्कार।
4: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
4: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
4: जी।
3: तो अगर मैं

0: सी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
1: जी
0: देखूं तो भी काफी है, अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: शुक्रिया एक बार
1: जी
0: और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आपने
0: जी
1: कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते
0: जी
1: हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
0: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की
1: जी
0: कांच की,
1: जी
0: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला ब्राउन ब्लू जो भी दिखते हैं उसके
1: जी
0: पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है,
1: जी
0: उसके बाद पीछे का पर्दा है
1: जी
0: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस
1: जी
0: है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता
1: जी
0: दिया। अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं,
1: जी
0: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है।
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है।
1: जी
0: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो
1: अच्छा
0: पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है, ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है।
1: जी
0: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके
1: और ये
0: रिजल्ट्स आते
1: सभी
0: हैं,
1: जांच में पता चल जाता है
0: जांच में
1: कि
0: पता
1: हो
0: चल
1: रहा
0: जा
1: है।
0: जा ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है। जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे
1: इसकी
0: हैं।
1: क्या वजह हो सकती है?
0: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक
1: अच्छा
0: जो आया है हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग
1: जी
0: जाए किसी को,
1: जी
0: या डायबिटीज में जल्दी आता है, लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा।
1: जी
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई, मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक चीज जो होती है, जो यहां पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
1: अच्छा
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और

0: वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी चलता
0: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी
1: जी।
0: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए, बट शी इज ओके,
1: जी
0: शी इज नाइनटी
1: तो
0: वन
1: इतना
0: ईयर्स ऑफ एज,
1: लंबा वो
0: इतना
1: लेंस
0: अरसा
1: चलता
0: हो
1: है।
0: गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है अब उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है, इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था, ये
1: अच्छा,
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम
1: जी
0: दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं, नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीज़ें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफ़ी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कोई इमल्सिफिकेशन हो मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज़ कर रहे हैं आँख के अंदर उसको
1: जी
0: तोड़
1: जी
0: के
1: तो उसका
0: निकाल
1: असर
0: के उसको साफ़ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आँखों की उम्र आपकी उम्र की तरह है, हम
1: जी
0: सब चाहते हैं हमारी आँखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आँखें भी 60 साल की, तो इट हैज़ ऑल्सो एज्ड। तो अगर
1: बिल्कुल
0: मोतिया हो और आपके आँख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आँख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी
1: जी
0: कौन करता है?
1: जी
0: ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी
0: आँख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको
1: बिल्कुल
0: दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता, और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है,
1: जी
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहाँ से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही है, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल
0: आँख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज़्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी
0: तो वहाँ पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आँख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आँख में कहाँ गिरेगा, आँख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल
0: तो अगर आँख में फट गया तो आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी
0: आँख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आँख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले ही कहा अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज़्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सहलेगा,
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं, और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान

0: की जा सकती हैं और कैसे कहाँ जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
1: जी बहुत ज़रूरी है,
0: जी
1: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं।
0: जी जी
1: नेत्रदान में एक बात समझनी ज़रूरी है कि आँख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आँख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फ़ायदा होगा?
0: जी
1: जिन लोगों की आँख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फ़ायदा हमने देखा हुआ है वो ऑपरेशन करके। काफ़ी सेंटर्स हैं आजकल, तो ऑनलाइन आपके नज़दीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो आप, टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना
0: जी
1: आँख
0: जी
1: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके

0: जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो आप, टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना,
1: जी
0: आँख
1: जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
0: जी
1: ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूँ कोई किसी का देहांत हो तो ये काफ़ी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता,
1: जी
0: क्योंकि सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो। हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था, विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं,
1: जी जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहाँ पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम हमने बड़े बड़े इंजुरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफ़ी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज़ हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत ज़रूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नज़दीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज, ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी लेट से जहाँ पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: फैक्ट्रियां हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके
1: जी
0: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूँ आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा, अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद
0: ग्लास
1: नहीं
0: यूज
1: कर
0: करो।
1: सकते
0: और
1: लोग।
0: एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
0: ज्यादातर
1: जी,
0: उसकी आंखों में उड़ता है,
1: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
1: जी
0: लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये
1: ये
0: कंसेप्ट
1: छोटे
0: बहुत
1: बड़े
0: है,
1: वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहां कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
0: आंखों
1: पर?
0: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं, न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट,
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूँ कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में?
0: जो नहीं, फैशन है उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो ऐसी, उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: हैं? ना ना ना नो नो नो नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर ग्लासेस है
1: जी,
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम

0: देते हो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले
1: जी।
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। आप टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है
1: जी जी, जी।
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है। गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है
1: जी। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए, तो कुछ नहीं कर सकते। और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी,
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में। तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं आंखों से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन आ रही है, आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी,
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है।
0: हाँ हाँ,
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है,
1: तब वहाँ आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलप

0: डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा।
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दिए, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है
0: जी।
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है
0: जी,
1: अपनी आंख को साफ कर रहा है
0: जी।
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती
0: जी।
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा, ठंडा
0: हाँ,
1: पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है।
0: तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के ऊपर,
1: किसी भी परिस्थिति में। और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है और ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
0: ओके,
1: तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख को
0: जी,
1: पानी मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं
0: जी।
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है
0: जी।
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हमारे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई।
0: दिन में नहीं निकलती,
1: दिन में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए
0: जी।
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
0: ओके,
1: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए, जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट नहीं नहीं आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं, हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 पीएचडी जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए, ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आँख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे वो बहुत जलता था
0: जी जी,
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
0: लड़कों को भी,
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए
0: जी,
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस,
1: वहां पे लगाइए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए, ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए
0: जी।
1: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को
0: जी।
1: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
0: नहीं।
1: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
0: क्योंकि सबसे नाजुक,
1: सबसे नाजुक चीज है। बहुत बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते
0: जी।
1: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता
0: जी।
1: वेरी सिंपल
0: जी।
1: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
1: जी जी। और ये मुझे कहा गया है कि
0: खतर
1: योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
0: जी,
1: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
0: हाँ,
1: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
0: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
1: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
0: जी।
1: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, ठंडा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
0: सही है।
1: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
0: जी,
1: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
0: जी,
1: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया तो गिर गए तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना।

0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
1: जी जी
0: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है
1: जी।
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शॉवर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
0: सेम पानी आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना। हमने देखी है इन आंखों की खुशबू, गुलजार साहब का गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियाँ रहती है, पैदाइशी बीमारियाँ रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था, जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती हैं।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का। एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूँ, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी जी,
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते, ये होते, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना ज़रूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
0: वो बैलेंस नहीं है।
1: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है।

0: उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया
1: जी,
0: ठीक है। अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन प्लस टू प्लस थ्री आती है हाई डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा, पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है। तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है।
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी जी
0: ओके। आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है
1: जी,
0: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है
1: जी,
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी जी,
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रासेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट। तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का? ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहाँ पे लाइट जाके लगता है और जहाँ से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खुश अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहाँ कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियाँ आए या खून आए और सूजन आए तो आँख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज़्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीज़ें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 साढ़े 300 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो ये चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी,
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम
1: जी।
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना,
1: बिल्कुल।
0: नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है
1: जी,
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर,
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेक
0: बहुत जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सके और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए
0: जी।
1: डॉक्टर साहब यहां एक गाना सुनते हैं फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफ़ी टाइम, अगर आँख की जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आँखों को बहुत ही बचाया गया है। देर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आँखों में काफ़ी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीज़ें जो है, हाँ, एक और चीज़ जो लोगों को दे, काफ़ी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आँख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है।
0: जी,
1: ये थकावट

0: के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
1: जी जी,
0: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है, तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम, वहां से वो सटक भी सकता है। इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है?
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा,
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
1: जी जी,
0: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली।
1: जी जी,
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो तो क्या होने वाला है? वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
0: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान निकल जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी है?
0: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है, एक जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: सो मैक्यूला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्यूला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्यूला में डिजेनरेशन यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
1: अच्छा,
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी जी,
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है।
1: अच्छा,
0: और कोई नहीं?
1: जी,
0: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी जी,
0: तो ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ CT स्कैन ऑफ द रेटिना।
1: जी,
0: तो हमको बराबर वो स्लाइसिस, उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी, अनफॉर्चुनेटली। ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है।
1: जी जी,
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शन ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है, एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है, तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ शरीर में देखिए लिमिटेशंस हैं। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी जी जी,
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीजों में, आप भी जानते हैं, वेदर मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी

0: चीज का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी,
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल यानी क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है,
0: आप जानते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: वापस जाइए, वापस 8th 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस
0: वर्चुअल
1: बिल्कुल।
0: इमेज है, अरे
1: हाँ,
0: वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब
1: सीधे
0: हम
1: होती
0: एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम उल्टे हैं। अच्छा, वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार।
1: कमाल
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये कर
1: यहां तक
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: जाता
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: है यस
0: क्योंकि
1: डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना,
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो
1: सेल्फ
0: जरूर
1: मेडिकेशन
0: डालिए।
1: इज
0: सेल्फ
1: डेंजरस।
0: मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ, देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी जी
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू, दे आर मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें,
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता।
1: जी,
0: ओके, लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए।
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक, शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखें, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपया करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है, कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें।
1: जी,
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है,
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन
1: नो
0: लाइफ,
1: शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही
0: ये
1: बॉटम
0: बहुत
1: लाइन
0: है।
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप
0: थैंक
1: राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के
0: यू।
1: बारे में आपने बातें की,
0: नहीं,
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया, और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं, तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये, तो
1: जी
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और

0: प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं दिल से फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एमजी श्रीकुमार की।

दोस्तों अभी आपने सुना फिजा फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। संगीत एआर रहमान का, गीतकार गुलजार। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत। सोनू निगम और कविता कृष्णामूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है डोली सजा के रखना।

दोस्तों अभी आपने सुना एक था टाइगर फिल्म का गीत, मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक की आवाज़ों में, संगीत सोहेल सेन का, गीतकार कौसर मुनीर। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुँचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
3: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
3: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
3: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
3: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
3: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
3: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
2: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
2: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें

0: आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा

0: ने लिखा है।
1: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
2: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
0: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
1: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
2: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
1: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
0: अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
1: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
2: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
0: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
2: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
0: नौ अगस्त 19

0: 1825 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
0: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
1: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर।

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है।

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई

0: आई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz 'ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, हरियाणा सरकार दे कर्मचारियां अते हरियाणा कैडर दे अखिल भारती सेवावां दे अधिकारियां नूं सूचित किया जाता है कि वित्तीय साल 2025-26 की जनरल प्रोविडेंट फंड की सालाना विवरणी जारी कर दी गई है। ये विवरणी प्रिंसीपल अकाउंट जनरल ए एंड ई हरियाणा की वैबसाइट और डिजी लॉकर से उपलब्ध है। संबंधित कर्मचारी अपना GPF खाता नंबर, सीरीज कोड और लॉगिन वेरव्या की वरतों करके इसनों वेख और डाउनलोड कर सकते सन। इस तो इलावा वित्तीय साल 2023-24 तो अगे दियां सारियां सालाना GPF विवरणियां भी डिजी लॉकर राही डाउनलोड करन लई उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की जानकारी या सहायता लई दफ्तरी समय दौरान हैल्पलाइन 0172-350-3960 या ईमेल agaehariana@cag.gov.in संपर्क किया जा सकता है। जरूरी सूचना खत्म हुई।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਰਾਜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ। FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय की सेवाओं को राष्ट्र की निर्णायक शक्तियों में से एक बताया। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले में स्थित 3 रेलवे लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। भारत ने डिजिटल अंगदान पोर्टल शुरू होने के 3 वर्षों के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक आंकड़ा पार किया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया और हरियाणा सरकार ने नूह जिले के गांव दादू में नया राजकीय कॉलेज स्थापित करने को प्रशासनिक मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय की सेवाओं को राष्ट्र की निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में रेवाड़ी जिले में स्थित 3 व्यस्त रेलवे लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम HSRDC द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना पर अनुमानित 207 करोड़ 29 लाख रूपये की लागत आएगी। परियोजना के अंतर्गत 2 एवं 4 मार्गीय रेलवे ओवरब्रिज के साथ आवश्यक स्थानों पर पुल के नीचे सड़क, सर्विस रोड तथा अन्य आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत शहर में लंबे समय से रेलवे फाटकों के कारण लगने वाले जाम की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा तथा यातायात अधिक सुगम, सुरक्षित और निर्बाध बनेगा। इससे दुर्घटनाओं की संभावना में भी उल्लेखनीय कमी आएगी और सड़क सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्षों के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रति वर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन जीने और समाज में अंगदान के प्रयासों को बढ़ाने की अपील की।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के

0: अच्छे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे। और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर उन्होंने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इस वर्ष मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए

0: मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इस वर्ष मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया गया है।
1: विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: श्री मेघवाल ने कहा कि यह कदम न्यायिक क्षमता को और मजबूत करेगा, मामलों के प्रभावी निपटान में तेजी लाएगा। हरियाणा सरकार ने नूह जिले के गांव दादू में नया राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस नए सरकारी संस्थान के लिए 60 सीटें स्वीकृत की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस परियोजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज से मेवात और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपने ही इलाके में उच्च स्तरीय नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा प्राप्त होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। mygov.in के माध्यम से आयोजित यह राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता 15 सितंबर तक चलेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रतियोगिता केवल एक ऑनलाइन क्विज नहीं बल्कि देश के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास है। इस राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में युवाओं, स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों तथा आम नागरिक भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं में इतिहास के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करेगी। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती उषा प्रियदर्शनी ने आज बादशाह खान नागरिक अस्पताल का निरीक्षण कर महिला मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और शिकायतों के मद्देनजर उन्होंने विभिन्न वार्डों, ओपीडी तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महिला मरीजों की सुविधाओं, स्वच्छता, शौचालयों की स्थिति, प्रतीक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की समीक्षा की गई। श्रीमती उषा प्रियदर्शनी ने अस्पताल प्रबंधन को महिला मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने और सभी व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने आज घरौंडा स्थित विश्राम गृह में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में हरविंद्र कल्याण ने कहा कि वे नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो सके और प्रशासन भी आमजन के प्रति जवाबदेह बना रहे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से समयबद्ध ढंग से निपटाने और संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा 13 में से 7 स्वर्ण पदक जीतने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और सरकार की खेलों के प्रति सकारात्मक नीतियों का परिणाम है। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कावड़ियों की संभावित बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे पुलिस बल और सामान्य रेलवे पुलिस GRP ने सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी हर आने जाने पर जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। साथ ही कोई और असामाजिक तत्व और कावड़ियों के रूप में शामिल न हो इसको लेकर भी स्टेशन पर बैठे लोगों की जाँच की जा रही है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 एवं नियम 2025 के तहत विभिन्न संगठनों को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा वेब पोर्टल पर पंजीकरण एवं सत्यापन की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश अनुसार वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष और संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव तथा मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव सदस्य होंगे। इसके अलावा हरियाणा के महाधिवक्ता के प्रतिनिधि

को विधिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है, जो अतिरिक्त महाधिवक्ता के से कम रैंक का नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल मुख्यालय की सेवाओं को राष्ट्र की निर्णायक शक्तियों में से एक बताया। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले में स्थित 3 रेलवे लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर एकीकृत रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। भारत ने डिजिटल अंगदान पोर्टल शुरू होने के 3 वर्षों के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक आंकड़ा पार किया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ।
2: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਰਿਆਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ।
1: ਬਣ ਗਿਆ ਬਜਟ?
2: ਹਾਂ,
1: 5000 ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੜੀ ਲੈ ਲਵਾਂ?
2: ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲਈ ਸੀ।
1: ਇੱਕ ਹੋਰ
2: ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਵੇਖੋ।
1: ਵੱਡੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਜਾ ਭੈਣੇ।
3: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
2: ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾਰੀ।
4: ਕੰਪਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨਸ ਆਪਣੋ ਕੇ ਲਈ ਸਭਸੇ ਸਹੀ RBI। इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ।
7: प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कोयल, वाचिका अमन सैनी। आज पूरी दुनिया नशे की बढ़ती समस्या से जूझ रही है। यह केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं रह गया है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर संकट बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार विश्व भर में लगभग 30 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। देश में शराब, तंबाकू, हेरोइन, कोकेन और विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक नशीले पदार्थों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि युवाओं का एक वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है। नशे की लत व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य सभी को प्रभावित करती है। यदि देश की युवा शक्ति कमजोर होगी तो विकसित भारत का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य केवल नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना नहीं बल्कि युवाओं को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाकर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनाना है। यह अभियान अगले 100 सप्ताह तक देश भर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। 2 अगस्त 2026 को अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि नशा युवाओं के सपनों को तोड़ देता है, परिवारों को बर्बाद कर देता है और समाज की ऊर्जा को कमजोर करता है। उनका मानना है कि कुछ असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकतें युवाओं को नशे की ओर धकेलकर देश की शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। इसीलिए नशे के खिलाफ लड़ाई केवल स्वास्थ्य की नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की भी लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से विशेष अपील की कि यदि बच्चों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिखाई दे, वे देर से घर आने लगें, कमरे में अधिक समय बिताएं, अनावश्यक रूप से अधिक पैसे मांगे या परिवार से दूरी बनाने लगे तो इन संकेतों को गंभीरता से लें। सामाजिक प्रतिष्ठा या बदनामी के डर से समस्या को छिपाने के बजाय चिकित्सकों और विशेषज्ञों की समय पर सहायता लेना ही सबसे प्रभावी उपाय है। इस अभियान की विशेषता यह है कि इसमें केवल सरकारी संस्थाओं की नहीं बल्कि समाज की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आध्यात्मिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, चिकित्सा विशेषज्ञों और युवाओं को इस अभियान से जोड़ा गया है। प्रत्येक रविवार को खेलकूद, योग, ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला और सामाजिक सेवा गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि युवा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं और नशे से दूर रहें। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हरियाणा सहित देश के अनेक राज्यों के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और जिला मुख्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों और युवाओं ने प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन सुना तथा नशा मुक्त समाज बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इससे यह संदेश गया कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने

0: कहा कि स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। उनके अनुसार यह अभियान तभी सफल होगा जब इसे जन आंदोलन का स्वरूप मिलेगा और युवा समय इसके नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अभियान की शुरुआत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भारत का युवा वर्ग नशे जैसी सामाजिक बुराई को परास्त करने में अवश्य सफल होगा। उनका मानना है कि जिस देश ने विदेशी आक्रमणों, युद्धों और महामारियों जैसी कठिन चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना किया है, वह नशे जैसी समस्या पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विकसित भारत के लिए युवाओं को नशे से दूर रखने को राष्ट्र की प्राथमिकता बताया है। उनका कहना है कि राज्य में राहगिरी, साइक्लोथॉन, मैराथन और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दिशा में और काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने नशा तस्करों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में नशे के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त खाप पंचायतों, सामाजिक संगठनों और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में नशे की लत से पीड़ित लोगों के उपचार और पुनर्वास के लिए 160 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा प्रतिबंधित एनाबॉलिक, स्टेरॉयड तथा नकली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश की युवा शक्ति स्वस्थ, शिक्षित, अनुशासित और नशा मुक्त होगी। इसलिए आज आवश्यकता केवल नशे के विरोध की नहीं, बल्कि एक ऐसे सामाजिक वातावरण के निर्माण की है जहां युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल, रोजगार और सकारात्मक जीवन के पर्याप्त अवसर मिले। यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव होगी। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz 'ਤੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय।
1: मदर इंडिया, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कोहे नूर, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है नौशाद अली का।

0: जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कोहे नूर, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है नौशाद अली।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वाले

0: घराना इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे शकील बदायूनी, संगीतकार थे रवि। गंगा जमुना इस फिल्म का नगमा आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत रचना नौशाद अली की।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला कव्वाली गीत है शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का, फिल्म का नाम है मुगले आजम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

आइए अब सुना जाए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है उम्मीद।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है उमा देवी की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद अली। फिल्म का नाम है दर्द।

0: इंजीनियर देव सिंह दुर्गापुरिया।
1: हुण तुसीं सुणिया जीजीपी नूं प्रोग्राम दा अगला गीत एमी विर्क अते मन्नत नूर दी आवाज़ां विच।

0: हवा महल में आज सुनिए सुरेंद्र कुमार तिवारी लिखित हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त।
1: अरे भैया चंदन प्रसाद, घर में छुपे हो या नहीं?
2: अरे फिर आज हमका कोई कमखत दोस्त, मैं तो परेशान हो गया हूँ छक्कन की माँ इन दोस्तों से।
1: अरे भैया चंदन प्रसाद, सो गए हो क्या?
2: अरे कोई उपाय करो छक्कन की माँ, कोई उपाय करो।
3: मैं क्या कर सकती हूँ?
2: अरे लोटा प्रसाद आज हमका है, कल नाश्ते के वक्त आ गया तो शाम तक सिर चाटता रहा, और आज तो खाने के वक्त आया है तो रात गुजार कर ही जाएगा।
1: अरे भैया भगवान को प्यारे हो गए क्या? मेरा मतलब पूजा पाठ कर रहे हो क्या भैया?
2: अरे छक्कन की माँ, हाँ मैं कह देता हूँ कि छक्कन की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम बहाना करके लेट जाओ, मेरी मदद करो छक्कन की माँ, नहीं तो इस घर का दीवाला निकल जाएगा।
1: अरे भाई चोरू के गुलाम और चंदन प्रसाद पत्थर की मूरत हो गए हो क्या?
4: कौन है भाई, जरा ठहरो। अरे भाई लोटा प्रसाद जी तुम?
5: हाँ भैया।
4: अरे क्षमा करना भैया, मैं वो आरती कर रहा था।
5: अच्छा अच्छा अच्छा,
4: किवाड़ खोलने में जरा सी देर हो गई भैया।
5: कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं।
4: कहो कैसे रास्ता भूल आए? अरे तुम तो गूलर के फूल हो जाते हैं भैया। कहो चलो चलो भीतर आओ।
5: हाँ भैया ऐसा मत कहो चंदन प्रसाद, अभी कल दिन भर ही तो तुम्हारे घर पर था, अब भगवान कसम ऐसी मोहब्बत हो गई है या तुमसे कि कहीं भी जाता हूं तो पैर खाम का तुम्हारे घर की तरफ चल पड़ते हैं।
4: वाह वाह।
5: और कहो भैया भाभी बच्चे कैसे हैं?
4: वो अरे यही तो रोना है भैया लोटा प्रसाद जी।
5: हा?
4: अरे कल रात से छक्कन की माँ की तबीयत बहुत खराब है।
5: तो भैया क्या अस्पताल में भर्ती करा दिया? अरे अरे भाभी जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, माफ कीजिए मैंने आपको देखा नहीं। होता है ना ऐसा कभी कभी कि आप उजाले से अंधेरे की तरफ जाएं तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़े। आप बोल क्यों नहीं रही? अरे अरे रे आप कहाँ चले भाभी? अरे भैया भैया चंदन प्रसाद जी, ये भाभी मुझसे नाराज क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं कि कल मैंने आपके साथ रात का खाना नहीं खाया। अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है भैया, कल नहीं खाया तो आज खा लूंगा। क्यों भैया चंदन प्रसाद, आया हूं ना सही वक्त पर?
4: वो तो ठीक है भैया लोटा प्रसाद जी, लेकिन खाना पका ही कहाँ है भैया? अब देखो मैं तो कल से इनके पीछे परेशान हूँ, और तुम तो जानते हो भैया कि मुझे तो स्टोव जलाना आता ही नहीं है।
5: फिर भी इस हालत में भाभी किचन की तरफ क्यों गई हैं? अरे भाभी भाभी जी सुनिए, देखिए मेरे लिए चाय वाय मत बनाइएगा, मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ। अगर अपने लिए बना रही होंगी तो कोई अरज नहीं, पी लूंगा हाफ कप, नहीं तो भाभी खामखा नाराज हो जाएंगी।
4: भगवान तू ही पीछा छुड़ा।
5: अरे ये कौन करा रहा है? अरे भाभी जी हैं क्या? अरे भाभी जी आप करा क्यों रही हैं? क्या कोई तकलीफ है आपको?
6: अरे अरे क्या बताऊं भैया, अरे जाने क्या हो गया हमारी टांगों को, अरे टांगों में बड़ा दर्द है।
5: अच्छा?
6: ओ शोरगुल सहा नहीं जाता, अरे किसी का आना जाना भी बर्दाश्त नहीं हो पाता।
5: ओ,
6: बस अकेले में चुपचाप पड़ी रहने को दिल जाता है।
5: अच्छा? जाने कैसा मर्ज है भाभी आपको, कहो तो वैद्यराज को बुला लाऊं मैं।
6: अरे नहीं नहीं भैया, फिर वैद्यराज का नाम न लेना, अरे ये जनाना मर्ज है भैया, जनाना। हाँ औरत की पीड़ा औरत ही समझ सकती है, भैया बैदराज के बस की बात नहीं।
5: भाभी मर्ज तो मर्ज ही है, फिर जनाना मर्ज, भगवान बचाए इससे, इसमें तो बड़ा आराम चाहिए, ऊपर से समय समय पर नाश्ता और खाने पीने को भी मिलते रहना बहुत।

0: और ये भाभी मैं इसका प्रबंध करता हूँ अभी। मैं अभी घर जाता हूँ और टुनटुन की माँ को साथ लाता हूँ। बस भाभी मैं अभी गया और अब आया। भैया चंद्र प्रसाद जी मैं अभी वापस आया अपनी बटालन के साथ।
1: अरे नहीं नहीं सुनिए लोटा प्रसाद जी। भैया
2: आप घबराइए मत छक्कन के पापा।
1: क्यों?
2: आज मैंने लोटा प्रसाद की लुटिया न डुबो दी तो मेरा नाम भी छक्कन की माने। हाँ
1: अच्छा?
2: बस इतना ही करना कि उनके आने के बाद वैद्यराज को बुलाने के बहाने घर से बाहर निकल जाना।
1: अच्छा?
2: और लौट कर पिछवाड़ी की खिड़की से भीतर चले आना और स्टोर रूम में आराम करना, समझे? बाकी का काम मैं संभाल लूंगी।
1: अच्छा,
3: मैं मर गई रे छक्कन के बापू। अरे कहाँ हो? अरे अरे मैं मर गई रे।
0: हम आ गए भैया। आओ बच्चा
1: आइए आइए लोटा प्रसाद जी आइए आइए। भाभी जी आप भी आइए। बड़ी मेहरबानी की आपने मुझ पर। अरे बड़ा साहस मिला है मुझे आप लोगों को देखकर, वरना मैं तो घबरा ही गया था। अरे इनकी चिल्लाहट सुनी नहीं जा रही मुझसे। आप लोग तब तक इन्हें संभालिए, मैं वैद्यराज को बुलाकर लाता हूँ। अच्छा
0: आप बेफिक्र रहे भैया,
1: मैं वैद्यराज को ला रहा हूँ।
0: आप इत्मीनान से जाइए भैया, इत्मीनान के साथ जाइए, हमको ये गैर थोड़ा ही है। अरे टुनटुन की माँ जाओ भाई, जाओ जरा भाभी का हालचाल पूछो, कैसे करा रही है बेचारी, जनाना मर्ज है ने।
2: धीरज रखो बहन, धीरज रखो। देखो हम लोग आ गए हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। बोलो बहन क्या खाओगी? खीर, रायता, रबड़ी, हलवा। टुनटुन के पापा को भी भूख लगी है।
3: जीती रहे बहन जीती रहे। अरे तू आ गई तो बस मेरा सारा रोग दोष मिट गया। हाँ बस यही पैर कटा जा रहा है।
2: अच्छा,
3: सुना है तू बड़ा अच्छा मालिश करती है, जरा सी मेरे पैर में भी।
2: क्यों नहीं बहन, अब मालिश कर देने से कट थोड़े ही जाऊंगी। लाओ लाओ बहन लाओ, अब पैर इधर लाओ, मैं मालिश किए देती हूँ। ला
3: ये लो।
2: लाओ लाओ।
3: वाह रे बहन वाह। अरे वाकई तू तो बड़ी अच्छी मालिश करती है। हाँ यहाँ ऊपर घुटने पर भी। हाँ थोड़ा सा यहाँ कमर पे भी। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हाथ भी दबा दे। वापिस ये पाँव पे। हाँ ठीक है। अरे हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे दो चार दिन रह जा तो मेरी तो सारी बीमारी छूमंतर हो जाए। बस ठीक है ना? हाँ थोड़ा सा और दबा दे बहन। क्यों थक गई? रहने दे, तेरे हाथ भी दर्द करने लग गए होंगे ना। पहले पहल यूं ही दर्द करता है, घबराना मत, दो चार दिनों में आदत पड़ जाएगी। अरे हाँ तू कुछ पकाने खाने की बात कर रही थी ना। हाँ तो जा किचन में चली जा। और हाँ सुन, जरा संभाल के जाना। ओह पूरा किचन गंदा पड़ा है, जरा बर्तन भी मांझ लीजियो, पोछा भी लगा दीजियो। और सुन सबसे बाद में रसोई को धो दीजियो। अरे मैं तो कल से उठ ही नहीं पाई। जा जा किचन में चली जा, जा जा, अरे तेरा ही घर है। हाँ जा अब। अरे भैया लोटा प्रसाद।
0: हाँ भाभी। आया। क्या बात है भाभी?
3: अरे बात क्या होती, क्या बताऊं भैया, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए।
0: हाँ भाभी पता नहीं भैया चंदन प्रसाद अभी तक आए क्यों नहीं।
3: अरे नहीं आए तो आ जाएंगे शाम तक। शाम तक नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। कल नहीं तो परसों आ जाएंगे, और परसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो हफ्ते भर में तो आ ही जाएंगे।
0: हफ्ते भर में? लेकिन वैद्यराज का क्या होगा भाभी?
3: वैद्यराज? अरे वैद्यराज की क्या जरूरत है अब। और फिर टुन टुन की माँ से बढ़कर कौन वैद्यराज मेरा दर्द हरेगा। अरे कितनी अच्छी मालिश करती है मेरी बहन।
0: हाँ, वो तो।
3: थक गई होगी।

0: बेचारी, सुनो, जरा किचन में जाकर उसकी मदद कर दो ना भैया।
1: हाँ भाभी, आप ही लो
0: हाँ,
1: उससे।
0: बड़ी अच्छी है।
1: अरे सुन रहे हो टुनटुन की माँ, भाभी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही है।
2: क्या आप मुझे इसीलिए यहाँ लाए हैं? मैं कोई नौकरानी थोड़े ही हूँ कि सिर दबाऊं, पैर की मालिश करूं, खाना पकाऊं, झाड़ू पोछा करूं। अपने घर की रानी, दूसरे के घर भरे पानी। मुझको तो इस जनाना मरज में भी कोई चाल लगती है।
1: चाल?
2: हाँ, किचन में देखो तो सारे डिब्बे खाली पड़े हैं।
1: चालाकी
2: ऊपर से मेम साहब लेटी लेटी हुक्म चला रही हैं।
1: हाँ
3: अरे टुनटुन की माँ, अरे हलवा बन गया, अरे बड़ी जोर की भूख लगी है।
1: अरे बस भाभी, बस अभी आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। आप असल भाभी, बात यह है कि किचन बिल्कुल खाली पड़ा है, शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं है, बाजार जाकर लाना होगा।
3: बाजार जाओ और खरीद लाओ हफ्ते भर का सामान।
1: हफ्ते?
3: हाँ, और आते समय जरा पावर कत्था और पावर सुपारी भी लेते आना, थोक खरीदने में सस्ता पड़ता है।
1: हाँ
3: हाँ,
1: भाभी, वाह,
3: अरे
1: हफ्ते भर का सामान, पूरा सामान खरीद कर लाना होगा। हे भगवान, कहाँ फंसे टुनटुन की माँ? हम लोग तो इनका दिवाला निकालने आए थे,
3: हाँ,
1: लेकिन
3: नहीं तो
1: लगता है अब
3: क्या।
1: तो अपना ही दिवाला निकल जाएगा।
3: हाँ,
1: अरे अब मुझे क्या करना चाहिए? बाजार सामान खरीदने जाऊं या सीधे
3: देखो
1: घर?
3: मेरी बात मानो तो चुपचाप घर चले जाओ, और सुनो, मैं भी मौका पाती फूट लूंगी यहां
1: हाँ
3: से।
1: ठीक है, ऐसा ही करता
3: हाँ, ऐसे
1: हूँ।
3: कर।
1: अच्छा भाभी, मैं बाजार जा रहा हूँ सामान खरीदने, और वैसे ही भैया चंदन प्रसाद की भी खोज करता होऊंगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। अभी नहीं तो शाम तक नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, हफ्ते भर में तो मिल ही जाएंगे भाभी।
3: अरे अरे टुनटुन की माँ, अरे इधर आ जा बहिन। अरे तब तक यहीं आ जा, अकेली मत बैठे उधर। हाँ, इधर बैठ। हाँ, अरे राम, बस एक मेहरबानी और कर दे मेरे ऊपर। मेरी साड़ियों से पसीने की बदबू आ रही है, और छक्कन ने भी कल से सारे कपड़े गंदे कर रखे हैं। अरे बहन, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा, जरा सा उन्हें
2: बहन,
3: भी।
2: इन्हें साफ करने में कोई हरज नहीं, मगर
3: हाँ,
2: मेरी आदत नहीं है, घर पर मेरे कपड़े धोबी ले जाता है। अब बुरा मत मानना बहन, पसीने की बदबू मुझसे सही नहीं जाती, जाने कैसा कैसा लगने लगता है। और फिर करूं भी तो कैसे करूं, यहाँ तो साबुन भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं। अब मतलब वो मेरा पर्स टुनटुन के पापा की जीब में रह गया। अब कपड़ा साफ करना तो जरूरी है, और फिर साबुन के लिए पैसे, पैसे के लिए पर्स, और पर्स के लिए टुनटुन के पापा को खोजने निकलना ही पड़ेगा। क्या कहती हो बहन, निकल पड़ूं मैं भी खोजने टुनटुन के पापा को?
3: भगवान तुम्हें भी सद्बुद्धि दे बहन। अरे जैसा उचित समझो करो, पर सुनो, अरे लौटोगी कब तक?
2: अरे वही, अभी अभी अभी नहीं तो शाम तक।
3: हाँ,
2: शाम तक नहीं तो कल तक।
3: हाँ,
2: कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। अरे नर, हफ्ते भर में लौट ही आऊंगी बहन।
3: चली गई बेचारी। अरे निकल आओ छक्कन के पापा, निकल आओ, लाइन क्लियर है।
4: मैं आ गया छक्कन की माँ, मैं आ गया। सुना तुमने, तुम्हारी बहन क्या कह रही थी जाते जाते?
3: क्या कह रही थी?
4: अरे वो कह रही थी, जान बची तो लाखों पाए, कौन लौट इस घर में आए।
3: हे भगवान, कैसे कैसे दोस्त पड़े हैं तेरी दुनिया में।

कैसे कैसे दोस्त। हवा महल में अभी आपने सुरेंद्र कुमार तिवारी लिखित यह हास्य नाटिका सुनी। प्रस्तुत करता गंगा प्रसाद माथुर।

0: पॉडकास्ट की, हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की,
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं इब्राहिम अश्क, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान और गायक संगीतकार हिमेश रेशमिया की आवाजें। गीतकार हैं समीर, फिल्म का नाम है कजरारी।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत शंकर महादेवन की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गीत है आनंद राज आनंद और श्वेता की आवाजों में। गीत को लिखा है अनजान सागरी ने, संगीत है आनंद राज आनंद का और फिल्म का नाम है वेलकम।

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37

0: करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के

0: वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए, मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है जानिसार अख्तर, संगीतकार है जय देव, फिल्म का नाम है

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। तर्ज है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है राजकुमार।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लव मैरिज।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झोंके चले तो दिल

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं जयदेव, फिल्म का नाम है लैला।

0: पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है जयदेव, फिल्म का नाम है लैला मजनू।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज।

0: ध्वज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
2: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं, और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूं।

0: तुझसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चली गई। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संग

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं। बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

20 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरी जिंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी बंदगी की आस में एक आस तुम भी हो। तुम क्या हो मेरे, कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर जिंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। मैं दिन हूँ, मेरी शाम हो तुम, मैं नींद हूँ, मेरा ख्वाब हो तुम, मैं लब हूँ, मेरी बात हो तुम, मैं तब हूँ जब मेरे

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में, पूछती है मुझसे अक्सर ये हवा।

हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

पलकों की मुडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप। गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब तक तो था उससे बहुत गहरा था रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या? मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़

0: कपड़ा है क्या? ये जो सुन रहे हो तुम इतने गौर से मेरी बातें फरियादें, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या?
1: तुझे

कि वो मेरा है, फकत मेरा। कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं। कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां। कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं। कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में। कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं। कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका। कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं। कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए। कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलट कर किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नजर अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे मायूस करने का। मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपनी किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी ना।

0: साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

व्यापी मुकाबला 15 सितंबर तक खुला रहेगा। मुख्य प्रादेशिक खबरां खत्म होईयां। तिलो हुण सुनो कुछ पंजाबी गीत प्रोग्राम सुरसांज दे तहत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
2: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
0: लोन सुनो टाइसन सिद्धू अते सरगी मान दा गाया गीत।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਟਾਈਸਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਰਗੀ ਮਾਨ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो ऐसे सुन रहे हो पंजाबी की तरह सजा प्रोग्राम सुर सांझ। प्रोग्राम का अगला गीत परी पंधेर की आवाज़

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: सुनो दीपमणि अते इंसोनो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री

0: मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।